कबीर जी महाराज ने कैसी बात कही है। कहने ने हाथी तो नमस्कार प्या कर दिया, हाथी अपनी ड्यूटी नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा? जेड़ा राम मेरे च बैठा होया ओ ही हाथी च बैठा होया। पंकज दे बसे भगवान, कहने ने मैं हैरान हा भाई मैनु सजा क्यों मिल रही, ना मैं चोरी की, ना मैं डाका मारिया, ना मैं कोई कतल किया, कोई गलत काम ही नहीं किया, सजा किस गल दी? क्या अपराध संत है कीना, बांध पोच कुंचर को दीना, बांध पोट कुंचर को दीना, कुंचर पोट ले

चलिया एक दिहाड़े धन गुरु अर्जन साहब इस शब्द दे विच इंसान दा इस संसार तो जाना इस तरह बयान करते हैं। पता नहीं सी कि इस तरह परमेश्वर दा सदा आ जाएगा। साहब जी कहते हैं इंसान हर काम महूरत देख के करता है। घर बनाना हो घर बन जावे, ग्रह प्रवेश करना हो, या कोई विआह हो, कोई भी खुशी दा

राज मिलक जोबन ग्रैसोबा रूपवंत जवानी जान वाला सब कुछ छड़ गया राज भाग जोबन जवानी ग्रह केंद्र ने कारण अपना कार सोबा सोना रूप सारा कुछ छड़ के एक दिन तुर पिया बहुत दर्ब हस्ती यार कोड़े लाल लाख बयानी हाथी कोड़े समय दी सवारी हर चीज एक दिन छड़ के जो बड़े चाह नाल बनाई एक दिन तुर पिया।

कदी हसो ना, क्यों मौत एक सच्चाई है, जीवन झूठ है। असी लोग मौत नू भुला देने हैं, पर मौत इंसान नू कदी नहीं भुलदी। समय नाल ओ आके ले जांदी, क्योंकि उदा हुक्म बड़ा डर है। पति ना रवे ते औरत दा जीवन कहो जे है, तन गुरु नानक साहब बाणी विच बयान करदे ने। औरत दे दर्द नू समझिया, अपने आप नू फिर कहन लगे, ऐ परमेश्वर, ऐ अकाल पुरख, तू मेरा पति है। जिवें औरत दा जीवन पति तो बगैर कुछ नहीं, तू मेरा पति है, तेरे बगैर मेरा जीवन भी कुछ

इस वास्ते के है कि मां बाप नियामत ने विछोड़ा किसे दा भी पवे विछोड़ा सहना बड़ा औखा है। मां मरे प्यो मरे पुत्र मरे पत्नी मरे चाहे पति मरे पर साहब जी कहंदे ने ए भी सच है मरना जरूर है ए भी सच है कि दुख सहना बड़ा औखा है। इसे वास्ते ए बाणी दिती है कि परमेश्वर दा सिमरन करो दुनिया नु नाशवान समझो ताकि इस दुख नु तुसी सह सको ए समझ सको ए हुकम सी जिड़ा आया है उन्हें जाना जरूर है। एक दिन असी भी जाना है ताकि दुनिया दे नाल इन्ना मोह ना करिए कि मरण लगे हैं।

सुंदर अखाड़े रण मैं जिते पवाड़े। हर इंसान ये चाहता है कि मैं किसे ना किसे ते हुक्म चलावा, मेरी हुकूमत होवे, दुनिया मैनू सलाम करे। इंसान लड़ाइया जितता है, तरक्कियां करता है, बड़ा कुछ बना भी लैंदा है। ये भी कहता है हों मारो हों बंदो छोड़ो, मुख ते एव बबाड़े। मुख कहंदे ने मोन, मोह तू भी कहंदा है मैं जिन्हों चावा उन्हों मार सकदा, जिन्हों चावा उन्हों छड़ सकदा। पर साहब जी कहंदे ने दुनिया ते हुक्म चलाण वाला कल भी सलाह करके सौंदा है,

एक के हरी हरी ए ऐसा एक शुभ ते सच्चा विचार है जिसनू एक सच्चा ते सुच्चा भगत ही अपने जीवन दे विच कह सकता है क्योंकि जिसका विचार एक परमात्मा दे नाल मिल गया जिसका हर रोम रोम प्रभु चरणा दे विच रम गया और जिसका हर श्वास परमेश्वर दे नाल मिल गया ऐसा भगत ही ये कह सकता है कि हमारे एक है हरि हरि। आन अवर सिंजान न करी ओ परमात्मा अपने भगत नूं गुरु राही नाम देवांदा है जैसा कि मालिक ने शब्द दे विच फरमान कीता है।

मनुख जप भी करता है और यथा शक्ति अगर ज्यादा कोशिश करे ते तप भी कर लेंदा है। आम देखण दे विच आउंदा है कि रब दे नां ते कई व्रत भी रखते हैं और रोजाना दा नेम भी करते हैं। सवेरे उठ के परमात्मा दी भगती करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। साहिब फरमान करते हैं कि सारा कुछ परमेश्वर की कृपा ना

ताप जो तप है, व्रत है नेम है, आचार तो मतलब करैक्टर है मनुख दा, और व्यवहार जो रोज दा व्यवहार करदा है, जात जो कम तो पहचानिया जांदा है। साहिब फरमान करदे हन कि ए सारा कुछ जे मनुख करदा होया अपने गुरु दे अर्पण कर देवे ते मानो के जो त्याग दे विच उसनु सुख प्राप्त होवेगा, जो शांति प्राप्त होवेगी, ओहो ही सच्चा सुख है और ओहो ही सच्ची उसनु शांति प्राप्त होवे। साहिबां दा फरमान है कि जे कोई ये चाहे कि मैं महा आनंद दी प्राप्ति कर लवां, ते महा आनंद दी प्राप्ति है कि उस मालिक दी कीर्ति कीती जावे, उस मालिक दा जस गाया जावे। जैसा कि गुरु नानक पातशाह ने अपने जीवन दे विच कीता, अपने जीवन दे विच उन्होंने होर कोई योग नहीं कीता, इको ही योग कीता कि उन्होंने अपने प्राणा राही प्रभु दी कीर्ति कीती। इतना गाया प्राणा करके, इतना गाया कि उन्हां दा जप ही ज्ञान हो गया, उन्हां दा तप ही ज्ञान हो गया। और साहिब फरमान करदे हन कि जेड़ा उस परमात्मा दी कीर्ति सच्चे दिलों करदा है, ओ मालिक दी प्राप्ति दे विच सफल

कत हूँ सुचेत हो के चेतना को चार किया, कत हूँ अचिंत हो के सोवत अचेत हो। साहेब गुरु गोविंद सिंह साहेब जी, बहुत प्यारी रचना अकाल उस्तत विच फरमान दी। कतहूं सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहूं अचिंत होय के सोवत अचेत हो।

आओ भाई, आज दे दिन अरदास करिए। पातशाह, साढ़े हिरदे विचों नफरत दी आंधी जो चलती है उसनों मिटा। बख्शिश कीती सी आप जी ने भाई कन्हैये उते, जिस वेले उसने दुश्मन नू दुश्मन ना समझिया, ते फिर तू सिख हो के सिख नाल नफरत करें गल बनेगी। कदी भी खून नाल खून नहीं तुलदा, पानी पाया ही खून तुलदे। नफरत नाल कदी नफरत खत्म नहीं होई, ओदे उते प्यार दा पाना पानी पाना पएगा। साच कहो सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पाए। बाबा गुरमुख सिंह जी एक गल आखदे हुंदे ने, तुसी किसे दे घर चले जाओ, तुसी उन्हां नूं कहो मैनूं प्यार दिओ, कोई नहीं देगा। जे तुसी खड़ के कह दे आओ लोगो मैं तुहानू प्यार दिया, हजारा लोग तुहाडे कोल आउणगे। ते पहल तू करनी है, प्यार असां देना है लैणा नहीं। देवे तां ठीक है, पर असी कहने इन्हें फतेह नहीं बुलाई, असी क्यों बुलाईए। ना भाई, वह नहीं बुलांदा, तू बुला ले, तू प्यार कर, तेरा फर्ज है। अहंकार ते नफरत दी आंधी विच ऐ मेरे पातशाह, जिवें तुसी मलम ते पट्टी दे दित्ती सी, ते मानो गाउंदा गाउंदा यही कुछ कह रहा सी। भावें कोई मोमन वेख रहा है, भावें कोई पहाड़ी राजा है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, पानी मूंह विच देंदा होया इको ही पुकार है, केड़ी

जछ गंधर्व उरग कहूं विद्याधर कहूं भय किन्नर पिशाच कहूं प्रेत हो कहूं हो के हिंदू आ गायत्री को गुपत जप्यो कहूं हो के तुरका पुकारे बांग देत हो कहूं को कुकाब हो के पुराण को पढ़त मत कतहूं कुरान को निदान जान लेत हो काऊ बेदरीत काऊ तांस्यों बपरीत काऊ त्रिगुण अतीत काऊ

इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी, सिकहु इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो।

पावक में अर पवन हूं मैं, पृथ्वी तल में सुकहा न जाई। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाई। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाही। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे।

0: कंधले की देख, तेरा नाम खुंडकारा।
1: खुंडकारा क्यों लगूंगे?
0: खुंडकारा लकड़ी दे उस टुकड़े नु कहंदे ने जिस उत्ते पटरा टिकाया जांदा।
1: पटरा क्यों दा?
0: जिस उत्ते धोबी कपड़े धोंदे ने। भगत नामदेव जी दास दे छीने सन, कपड़े धोंदे धोंदे अपनी आत्मा नु हरी नाम नाल धोंदे सन। इसे लिए उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैंने तेरे नाम की उंगली टेके जिन्नी के पटरे नु खुंडकारे दी।

मत नाल वाहिगुरु नूं याद करना सी, ओह मत पसारियां ने मार ली। नहीं, इत्थे तां आउणा ते जाणा है, इत्थे तां धर्म कमाउणा है ते धर्मशाला जाण के टिकणा ते तुर जाणा है। मन इत्थे नहीं लाउणा, मन उहदे नाल लाउणा है जिसने भेजिआ ते बुलाउणा है। महाराज कहिंदे ने, कोयल आया कोयली क्या तिस डंफ पसार, मोहलत पुन्नी चलना तूं संभल घर बार, हर गुण गाओ मना सतगुर सेव प्यार, गुरु की सेवा प्यार नाल कल प्रभु नूं याद कर ओहदे गुण गा, क्या थोड़ी बात गुमान, जैसे रहन प्राहो ने उठ चल से प्रभात, क्या तू रत्ता ग्रस्त से ओ सब फुला की बागात, मेरी मेरी क्या करे जिन दिया सो प्रभ लोड, सर पर उठी चल सा चलना छड जासी लख करोड़, लख चौरासी प्रमतियां सो दिन, लख चौरासी प्रमतियां दुलभ जन्म पायो, नानक नाम संभाल तू जिदी लोड़ है तेनू, एथे भी ते दरगाह विच भी जिसने तेरा मुख उजला करना है।

0: सब इस तुक नु गायन करो और सिंह। दिस इज द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब, सोठ महला
1: चौथा
0: चौथा। सब मिलके करो कीर्तन।

गंगा हिंदुस्तान का महान तीर्थ मनिया गया। गंगा दे किनारे ते बह के ऋषियां मुनियां तपियां ने तप कीता, अपने जीवन नू सुचज्जा बनाया। गंगा हिंदुस्तान का महान तीर्थ है। हिंदू लोग गंगा का पानी बड़ा पवित्र समझ के अपने घरां विच रखते। गंगा मैया भी कहा जाता है। तो गंगा दे लागे एक सलता नदी है, वो अगे जाके गंगा विच मिक्स हो गई। तो कबीर जी ने उदाहरण दिती, कहिंदे ने मैं कल्ला थोड़ा विगड़िया, गंगा दे नाल लग के सलता भी विगड़ गई। ऐसी विगड़ी गंगा ही बन गई।

कोई गावे, कोई सुने, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं कि कोई खास व्यक्ति ही इस नूं गा सकता है या सुन सकता है, बल्कि जो भी श्रद्धा नाल इस नूं पढ़ता है, श्रद्धा नाल इस बाणी नूं सुनता है, ये बाणी उसे दा कल्याण करती है। ऐसी है ये अमृतमयी बाणी, जिस बाणी प्रथाएं गुरु पातशाह कहते हैं।

और फिर अमृत नाम वाहिगुरु दा ये थाल है धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जिस दे विच ए बाणी असा कलयुगी जीवां दा उद्धार करन हित गुरु नानक ने कलयुगी जीवां नू दित्ती है मेर कीती है पातशाह ने।

0: रहे जल बिन कुंभ ना हो। ज्ञान का बतावन रहे गुरु बिन ज्ञान हो। ओ गुरु बिन ज्ञान हो।
1: पापा जी थोड़ी इस छबील के आसरे साडा पेंडा कटिया जाता है।
2: आसरा उसका आधार था। मैं देख सेवादार हाँ।
1: खुश रहो बाबा जी खुश रहो।
2: आप उधर ले पी। ओ ले पी।
3: जल पाया परमेश्वर पाया
2: अब मोहे जलत राम जल पाया। राम अधिक तन जलत बुझाया मन मारण कारण बन जाइए सो जल बिन भगवंत न पाइए।
4: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
2: हाँ बेटी।
4: बाबा जी असि भी मन में जल लग रहे हैं। थोड़े को हजार ही यात्री आते जाते शायद तुम्हें कुछ पता हुए।
2: कादा पता
4: ए मेरे पति ने इन्होंने सुपने विच एक थां वेखी सी पानी की एक छपड़ी और कंडे ते बेरी का दरख्त ते बेरी ते कां बैठते ने।
2: छपड़िया ते कई ने ते बेरी दे दरख्त भी बेअंत हैं।
4: नहीं बाबा जी आज बेरी ते इको ही होगी जिस तो कां उड़ के छपड़ी च डुबकी लैंदे ने ते चिट्टे हो उड़ जांदे ने।
2: चिट्टे हो उड़ते जांदे ने।
3: हां बाबा जी ते नाल ही आवाज आ रही सी
4: कागो हंस करे।
2: कागो हंस करे। कागो हंस करे ये तो गुरु नानक देव जी की बाणी है। तुसी इंज करो सिर्फ गोंदवाल चले जाओ उठे गुरु अमरदास जी का दरबार है। गुरु नानक की अलाई बाणी का सोमा।
4: गुरु अमरदास।
2: हाँ बेटी उन्होंने हर चीज का ज्ञान है। उन्होंने दर्शन करदे ही तुहाडे पैर अपने आप तुहानू उस मंजिल वल लै जाणगे जिस मंजिल तुहाडे दिल च तांगे।
4: किन्नी दूर है गोइंदवाल।
2: इथों थोड़ी दूर दरिया का पत्थर है उथे बेड़ी पैंदी है बस दरिया पार दे गोइंदवाल।
4: अच्छा बाबा जी असि चलने हैं।
2: परमेश्वर भली करेगा। कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम।
0: उठ परी दायूज साज सुबह नवाज गुजार जो सिर साई नानवे सो सिर कपल उतार। जो सिर साई नानवे सो सिर की देखाए उन्हें पैठ जलाए बालन संदे थाए बालन संदे थाए।
5: ओ साहब जी की गल है पहला तुसी ने कहा दिता।
4: असी किस तरह जानते सोचते हैं पहले पूछ लिया होंदा।
5: की पूछना सी।
4: सारे मुसाफिरों ने तुहाडी सेवा च कुछ ना कुछ भेंट किया पर असी साडे कोल ना तिल चौल ना धर्म ना तमड़ा।
5: और चलिए पहले मैं कोई कम कमाइया नहीं करता। मैं तो गुरु के दर्शन आई हूं संगतां की सेवा करके अपना जन्म सफल कर रहा।
4: फिर भी तुहाडियां लोड़ां।
5: मेरिया लोड़ा। मेरिया लोड़ा तो खुदावन पूरिया करता है तो वो भी चाहिए वेखिए जो कुछ मैं लोग दे जाते हैं जाके गुरु के दरबार चढ़ा देना। दिन वेले बेड़ी चढ़ाना तो राति लंगर चो ढेड़ पड़ के बाहर थड़े दसो जाना। मैं उगन हारा को गुण पले नहीं।
4: धन हो तुसी।
5: तन ते मैं नहीं पैना। तन तो गुरु महाराज है जरा सब न अपनी मिठी बाणी का अमृत पिलाता है। और दर से जाओगे तो उन्होंने कहना जिन्हें सानू यह सागर पार कराया उस अवगन हारे इस पाव सागर तो पार उतारो।